0: सूचना एस तनहु सेवा हस्पिटल दोलेगौड़ा बीपी चोकमा यही असोज 10 गते शनिबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका पेट मुटु छाती सुगर तथा थाइरोइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र पौडेल, हाड़ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर भीम सिग्देल, वरिष्ठ नाककान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अम्बालिका साक्य, मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका एनोमेली स्क्यान थाइरोइड सहित भिडियो एक्सरे सेवा विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष बराल
1: बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञसँग सेवा परामर्श लिन सम्पूर्णमा अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0-65414-377 र 98-65-44-343। तनहु सेवा हस्पिटल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 बेपी चोक।
2: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गंडकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गंडकी FM को पारीपट्टी मोबाइल नंबर 98560-30982 र 97-065-20200।

0: फोटोकपी र दुई प्रति फोटो ल्याउनु होला। सुलभ मोबाइल एसोसरीज शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौंडा सिद्धार्थ बैंक भएको भवनमा। प्रोपाइटर राजेन्द्र पौडेल, शान्ति पौडेल। सम्पर्क 0635414050, मोबाइल 9843723811।
1: टीभीएस कम्पनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौंडा में। टीभीएस कम्पनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीभीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौंडा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गण्डकी एफएम को पारीपट्टी। मोबाइल नंबर 9855309982 र 9705620209।
2: TVS साथ छ हाम्रो।
3: शुक्ला गण्डकी FM 97.6।